0: और बैरूनी तकालीफ के लिए यकसा मुफीद है। राब्ते के लिए कॉन्टेक्ट अस 0345-923-2860।
1: आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम कुदरती अज्जा से तैयार करदा जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम का रोजाना इस्तेमाल आपके चेहरे को बनाए तरोताजा। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम आपके चेहरे से दाग धब्बे, कील मुहासे, छाइयां और आंखों के गेट स्याह हल्के खत्म करे। आपके चेहरे, गर्दन और हाथों की झुर्रियां खत्म करे और आपकी उम्र को छुपाए। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम में सन ब्लॉक की इजाफी खसूसियात मौजूद है जो धूप के मौजूद असरात से आपके चेहरे को रखे महफूज। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की मुनफरद खुशबू और विटामिन दे आपको ताजगी का एहसास। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से 5 दिनों में पाए निखरा, शफाफ, बेदाग, गोरा चेहरा। बेहतरीन नतीज के लिए आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से चेहरा अच्छी तरह धोकर खुश्क कर लें। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की थोड़ी सी मिकदार लेकर चेहरे पर लेप करके हल्का सा मसाज करें। सुबह उठकर आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से धो लें। आसमानी कॉस्मेटिक्स जो नाम है एतमाद का। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस 0345-923-2860 0300-585-8481।

0: नंबर ये दे 0309-5029-244। कब शपे नुम याद सताए डबई सुर दे और कार्य स्पिन दे कब शपे।
1: हलका दिलबरा दावली दास गड़बड़ प्रोत ये और साग दर नसीले ओढ़े दे।
2: अंकल जी लकार चौकम नो बेदमशम पपाटो आओ जिसम में दर्द दुनिशी दापो पर सर चिल्ल नाश्ता ओकम नुस्तर गिराब मंदे तोरी तूरी कीगी।
1: दिलबरा नुतमाता न वाय ददे मसाले खोडेर आसान हल दे।
2: अंकल जी हगस
1: हम उस वर्षा और द बटाग्राम हर ख मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर की द ताकत पावर एक्स एनर्जी टॉनिक मिलावेगी। पावर एक्स एनर्जी टॉनिक खो ख्याल कवा सोक दर लबदल शरबत दर निकली और इख्तिया दहागे पहचान और नखदादा चे दयो सड़ी तस्वीर पे जोल दे और तेज मंड वही।
3: पावर एक्स एनर्जी टॉनिक पावर एक्स एनर्जी टॉनिक कचरिस्ता सु वजूद कमजोरी भी हर वक्त बेदमाए पमख मुँह तिर सरी भी या दस्तर गुदलान दे तोरे हल्की भी दकीनास्तो नपस उदरे दो सरा स्तरगे तोरे तोरे के दलु लपारा इस्तेमाल क्ले पावर एक्स एनर्जी टॉनिक स्पेशल द हगमा शुमानु द पारा हम फायदा मंदे कुमची वदन कई जल जल कीगी गंदे चिप्सुना और चूरन ये खोलली भी निनुन याद साते पावर एक्स एनर्जी टॉनिक। मेन डिस्ट्रीब्यूटर मोहसिन शाह ट्रेडर्स जेल मोल बटाग्राम दराबितेश मेरा दा 0311-158-7745 बल नंबर दे 0311-84-33-878।
4: दाव आखला लाला द कोर राशन पूरे 5000 रुपए बिल जोड़ शो और पदी गर्मी के द्रे उबेल उबेल दुकानों ने चक्कर में हूँ मोला गाओ समस्तड़े शो।
2: दादी सराव दीदी दाव गोरा ओड़ो सोमरा गट गट दी लका दल और दिरिज दाव गोरा उरिजी कमी और कसकर पकी ज्यादती और दा दाल खो बिल्कुल कच कच कारी दुमरे पैसे दी हम खराब इकड़े और क्वालिटी जीरो।
4: नुजसो कम लाला बाजार के हर दुकानदार खपल द मर्जे नर्ख लगवी और राशन हम दो नंबर राकवी।
2: ताता मा सोजल वेले दी आखवा देखा चकरी मलगवा और नेख निलिशंक रायना एन जनरल स्टोर तजा।
4: नो हल ता दा सिसदी सखास खबर है दलाला
2: हल ता ताता दा यो चत लांदे खंगवरा और म्यारी ओड़ खुशबुदार उरुजे सफा सुत्रा दालूना खालिस घोड़ी यानी डालडा कुकिंग आयल और रोजमर्रा जिंदगी टोल सामान मिलावेगी और टोलो नलवी खबरा बड़ा ग्राम के मुनासिब और रियायती नरखूनो बांधे हर से मिलावेगी।
4: वाह वाह यानी द महंगाई फिकर खत्म नोबिया मात पता हुआ जो उस जम और राशन रावड़ मते
2: पता याद सा था नीली शंकर आये ना एंड जनरल स्टोर बिल्कुल MCB बैंक तमखा मख यंग स्कूल गले के बडग्राम की ददवी दुकान दे कपत दर न गलती गी नो मुबशर हुसैन और मलक जेब सरा पदी नंबर हमारा अभी तक बोले 0320-956-65-45 और बिल नंबर दे 0322-922-83-42।
5: शुक्रिया आपने रेडियो अमन FM 88.4 बडग्राम ट्यून किया।
3: जिले बटाग्राम द खलकु
5: शुक्रिया आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।

हाँ जी ग्रहण और को तस्वीर रेडियो अमन एफ एम अटसी शरीय चार बटा ग्राम प्रोग्राम जिंदगी दिन दुनिया ये नतर दो बजू पूरी दा प्रोग्राम तस्व रेडियो अमन एफ एम अटसी शरीय चार बटा ग्राम मंदी और रेडियो सिफर 309 711 88 99 तस्वीर सर रब्ता कौले जी।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
1: सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
4: रेडियो अमन नेटवर्क।

0: रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: ग्रानो औरिदुन को तसो आवाज औरे द रेडियो अमन 88.4 बट ग्राम मुंग सरी उसे
3: दरमान होम्योपैथिक सेंटर जेल मोड़ बटग्राम कमकी बची सासो द हर किस्म मरज इलाज कवलैशी लग शुगर ब्लड प्रेशर अरक उन्निसा ला दर्द सर दर्द दविख्तो बेवख्तस्पीनी दिल वर्जी दिल दूसरी के दिल टेंशन डिप्रेशन स्ट्रेस एंजाइटी द मेदे मसले द गुर्दो मसले दस्तरगो मसले द गोगुनो मसले द पोजी मसले औ आग मरजुन कम चिप डाग दी औ आग मरजुन कम चिपट्टी दगा द टोलो मरजुनो इलाज ख आसान तरीके सरा बेहतरीन तरीके सरा प दरमान होम्योपैथिक सेंटर जेल मोड़ बटग्राम के द डॉक्टर निजामुद्दीन जलाल साहब औ दग रंगी बल सीनियर डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर अजमल खान साहब प जेर निगरानी के द सहर अतो बजो न माजिगर सलोरो बजो पूरी की गई तासो बिल्कुल रात तले शही यो बेहतरीन इलाज यो कामयाब इलाज आगा तासो डॉक्टर निजामुद्दीन जलाल से अखपला ओपीडी द हफ्ते रुम्बने सलोर रज कवि पीर मंगल बद औ जुमरात दगा शाने ब्याबल डॉक्टर सीनियर डॉक्टर डॉक्टर अजमल खान से अगवी अखपला ओपीडी पर दरमान होम्योपैथिक सेंटर के द हफ्ते अखिर ने द्रे रज कवि जुमा हफ्ता औ इतवार नौ पता याद साते दरमान होम्योपैथिक सेंटर जैल मोड़ बटग्राम नोर मालूम दपारा पति नंबर हम राबित कबूली शे 0331-47-48-317 0334-3-3 पते याद साते दरमान होम्योपैथिक सेंटर जेल मोड़ बटग्राम।
2: ग्रानो औरिदुन को तसो आवाज औरे द रेडियो अमन 88.4 बट ग्राम
4: दावाखल लाला द कोर राशन पूरे 5000 रुपए बिल जोड़ शो औपदी गर्मी के द्रे उबेल उबेल दुकानों न चक्कर में हूँ मोला गाओ समस्तड़े शो
3: दादी सरा उड़ी दी दाऊ गोरा ओड़ो सोमरा गट गट दी लका दल औ दे रिजु दाऊ गोरा उरुजी कमी औ कसकर पकी ज्याद थी औ दा दाल खो बिल्कुल कच कच खारी दुम रपी से दी हम खराब इकड़े औ क्वालिटी जीरो
4: नो जसो कम लाला बाजार के हर दुकानदार खपल द मर्जे नर्ख लगवी औ राशन हम दो नंबर राकवी
3: ता तमा सोजल वेले दी औ खा दी खा चकरे मलगावा औ नीख निलशंग कराए ना एन जनरल स्टोर तजा
4: नो हल ता दा सिस दी स खास खबर है दलाला
3: हल ता ता दा यो चत लान दे ख वरा औ मियारी ओड़ खुशबूदार उरुजे सफा सुथरा दालूना खालिस घोड़ी यानी डालडा कुकिंग ऑयल औ द रोजमर्रा जिंदगी टोल सामान मिलावेगी और टोलो नलवी खबर पबडग्राम के मुनासिब और रियायती नरखूनो बांधे हर से मिलावेगी
4: वाह वाह यानी द महंगाई फिक्र खत्म नोबिया माँ तपता हुआ या जो उस जम और राशन रावड़ मते
3: पता याद सा था नीली शंकर आये ना एंड जनरल स्टोर बिल्कुल MCB बैंक तमखा मख यंग स्कूल गले की बडग्राम की दबी दुकान दे कपत दर न गलती गी नो मुबशर हुसैन और मलक जेब सरा पदी नंबर हमारा बेतक बोले शे 0320-956-65-45 और बिल नंबर दे 322-982-43-42.
5: ریڈیو امن نیٹ ورک،
6: پیغام امن ہے،
7: پیار کی ایک دنیا لے کر،
8: محبت سمیٹ کر،
9: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
8: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک،
9: ریڈیو امن نیٹ ورک، امن رام

0: रेडियो अमन नेटवर्क न्यूज एंड इंफॉर्मेशन स्टेशन।
1: रेडियो अमन नेटवर्क
2: पैगाम अमन है,
3: प्यार की एक दुनिया लेकर,
4: मोहब्बत समेट कर।
2: सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
5: रेडियो अमन नेटवर्क।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
1: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।